गुड मॉर्निंग छत्रपती संभाजी नगर. तुम्ही ट्यून केलंय MGM 90.8 FM RJ अदनान तुमच्या सोबत आहे. आणि आजची मॉर्निंग बघा ना किती सुंदर आहे यार. एकदम मौसम मस्तान आहे पावसाचा आणि हातात एक गरमागरम चहा तर पाहिजे ना. मतलब कैसा देखो बारिश का मौसम हो और हात में चाय ना हो तो इस मौसम की तोहिन हो जाएंगी ऐसा मुझे लगता है. तो ये तोहिन मत कीजिएगा. आज की मॉर्निंग एक मुस्कान के साथ अपनी शुरू कीजिएगा. और हाँ एक बात याद रखिए, अगर ऐसा लग रहा होगा कि यार आज मैं छाता नहीं लेकर निकलूंगा, भाई बड़ा पछताओगे आप, लेकर निकलिएगा. और इस मौसम में ऐसा याद रखिए कि घर से बाहर निकलते वक्त छाता रेनकोट अक्सर साथ में रखिए, क्योंकि कब बादल गरजेगी और बरसात आएगी कुछ पता नहीं चलता. अभी रिमझिम है, कभी जोर से होती है, कभी कुछ नहीं होती, तो ऐसा सिचुएशन हो ही जाती है. तो आज की इस खूबसूरत मॉर्निंग को और भी खूबसूरत बनाते हैं मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ. आज के शो का आगाज करते हैं आपका एंटरटेनमेंट करते हुए ये अगला गाना अभी हम प्ले करते हैं. वाह वाह क्या बात है, बहुत ही राइमिंग बन गया. चलिए फिर मिलता हूँ कुछ ही देर के बाद. आज के दिन का दिन विशेष क्या है वो आपको बताने के लिए, बट उसके पहले एंजॉय कीजिएगा आने वाले सुपरहिट ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड.

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस इन सिक्स सिडको छत्रपति।

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: रोज एक फोन आता है और फोन उठाते ही एक ही सवाल, बेटा खाना खा लिया। कभी कभी ये सवाल इतनी बार बार सुनने को मिलता है कि हम बस कह देते हैं हाँ माँ खा लिया ना, चाहे खाया हो या ना खाया हो। लेकिन जब पढ़ाई, नौकरी या जिंदगी हमें घर से दूर ले जाती है, तब समझ आता है कि माँ का ये सवाल सिर्फ खाने के बारे में नहीं था। वो पूछ रही होती थी, तुम ठीक हो ना, किसी बात की टेंशन तो नहीं, अपना ख्याल रखते हो ना, मेस के खाने से पेट भरता है। वैसे यार माँ के हाथ का खाना तो खाना ही होता है, वो सिर्फ पेट नहीं दिल भी भरा देता है। फिर एक दिन फोन नहीं आता, माँ किसी काम में होती है या हम इतने बिजी हो जाते हैं कि मिस कॉल हो जाता है और अजीब सी बेचैनी होने लगती है। तब एहसास होता है कि जिस सवाल से कभी चिढ़ जाते थे, वही सवाल हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी तसल्ली थी। इसीलिए आज अगर माँ का फोन आए और वो पूछे बेटा खाना खा लिया, तो बस हाँ कहकर फोन मत काट देना, थोड़ी देर बात कर लेना, उनसे भी पूछना माँ आपने खाना खा लिया। क्योंकि माँ अक्सर सबको खाना खिला देती है, पर अपनी भूख सबसे आखिर में याद करती है। और यकीन मानिए, इस एक सवाल से उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती है उसका कोई मोल नहीं होता। समझे,
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन कल्चर एंड मीडिया ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस, N6 सिडको, छत्रपति।

हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान, और आपने ट्यून किया है MGM 90.8 FM। और इस वक्त ना तो हम आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, आप जो फरमाइश हम तक पहुंचाते हैं वही आज हम फरमाइश पूरी करने वाले हैं। और आज हमारे पास आपकी फरमाइश आई है साई माने जी की तरफ से इस गाने के लिए।

इस गाने के बारे में कुछ खास बात यह है कि ये सुंदर गीत 1965 की फिल्म खानदान का है। इसे अपनी जादुई आवाज में गाया है लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी ने। और इस गाने में स्क्रीन पर हमें सुनील दत्त और नूतन की जोड़ी नजर आती है, जिनका इमोशनल कनेक्शन गाने की गहराई को और बढ़ा देता है। इस गाने को म्यूजिक दिया है रवि जी ने और इसके प्यारे बोल लिखे थे राजेंद्र किशन जी ने। यह गाना सिर्फ एक मेलेडी नहीं है बल्कि डिवोशन और प्यार की एक मिसाल है। तो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिएगा ये फरमाइश वाला गाना। और आपकी भी अगर कुछ फरमाइश हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर।

मेरी एक फ्रेंड है यार जिसको पानी पूरी इतनी पसंद है कि कहती है अक्सर मैं दिन में से 3 से 4 टाइम तो पानी पूरी खा ही सकती हूँ और मेरे साथ तुम चैलेंज लगाओ, मुझे तुम हरा ही नहीं सकते। आपकी भी कुछ दोस्त हो गए यार और इतने पानी पूरी उनको पसंद है कि भाई वो लंच डिनर और ब्रेकफास्ट में बस पानी पूरी खा ही सकते। स्पेशली ना तो लड़कियां पानी पूरी की बहुत शौकीन होती है। देखो कुछ लोग भले आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर सकते हैं लेकिन पानी पूरी रिजेक्ट नहीं कर सकते। बट इन्हीं पानी पूरी लवर्स के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि जो आप पानी पूरी खाते हैं वो सच में उतनी हाइजीनिक है क्या? अक्सर पानी पूरी सड़क के किनारे हमें खाने को मिलती है और कुछ कुछ पानी पूरी वाले ऐसे जगहों पर अपना थैला लगाते हैं जहां पर साइड से नाला गुजरता है, कचरा होता है और पानी इतना गंदा यूज करते हैं कि ना खाए तो बेटर है। देखो मैं सभी पानी पूरी वालों का नहीं कह रहा हूँ लेकिन जो चीजें मैंने नोटिस की अपने शहर में तो लगा कि यार हाइजीन तो जीरो है ही। कहने का मतलब इतना है कि जो जितने भी पानी पूरी वाले स्टॉल लगाते हैं ना तो प्लीज यार अपना जो पानी है जो मटेरियल है वो हाइजीन रखे। और कुछ मैंने देखा है पानी पूरी वाले जो कि बस दिखावे के लिए हाथ में ग्लोव्स पहनते हैं और एक ही ग्लोव्स पूरे काम होने तक यूज करते हो। और ऐसे कुछ वीडियोस भी हमने देखे होंगे कि पानी पूरी वाले किस तरीके का पानी यूज करते हैं। और मौसम बारिश का है तो जरा अवॉइड कीजिएगा बाहर का खाना और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। एंड FDA अभी जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है जितने होटल्स है जहां जहां पर खाने की चीजें मिलते हैं उन पर, उस तरीके से आने वाले वक्त में और कुछ दिनों में पानी पूरी के गाड़ों पर भी FDA कार्रवाई कर सकता है। तो अगर पानी पूरी वालों आपको आपका थैला लगाना है तो प्रिकॉशन ले बहुत जरूरी है वरना FDA ने अगर आपके ऊपर कार्रवाई की बहुत पछताना पड़ेगा। तो इस वजह से हाइजीन मेंटेन कीजिएगा। देखो मैंने कहा तो ये तो होने वाला है नहीं, बस आप लोग भी सतर्क रहिए और जिस जगह पर आप पानी पूरी खा रहे हो पहले उसको पूछिएगा कि भाई तूने पानी कौन सा यूज किया है, किस तरीके का है और चेक कीजिए वहां पर हाइजीन है या नहीं। पानी पूरी खाने के चक्कर में आप बीमार पड़ जाओगे और बाद में आप भी बहुत पछताओगे। तो बी सेफ, बी केयरफुल एंड स्टे ट्यून।

0: खबर।
1: नगर सेवक कोई और ही होता है लेकिन काम कोई और ही करता है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन अभी महानगर पालिका में दिखाई दे रही थी। और ये सब चीजें चलती आ रही थी और सबको पता था, लेकिन एक्शन कोई ले ही नहीं रहा था। पत्नी चुनकर आई है तो काम पूरा पति देखता था, इस तरीके का ये सीन चल रहा था। या किसी का दीर या किसी का लड़का ये काम देखता था नगर सेवक का, और जो नगर सेवक है वो तो अपने घर पर थी, घर का काम कर रही थी। कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही थी एंड ये सो कॉल्ड नगर सेवक महानगर पालिका में बहुत घूम रहे थे और ऐसे आदेश दे रहे थे कि वही नगर सेवक है और उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो यही सब चीजें अब बंद होने वाली है, क्योंकि महानगर पालिका आयुक्त ने एक ऐसा आदेश निकाला है कि अगर सो कॉल्ड नगर सेवक काम खराब करे या फिर वही खुद आदेश दे या तो फिर नगर सेवक का काम वो सो कॉल्ड नगर सेवक ही करे, तो जो नगर सेवक चुनकर आया है उस पर भी कार्रवाई होगी। जो ऐसे सो कॉल्ड नगर सेवक बनकर घूम रहे ना, तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो जो इंसान चुनकर आया है नगर सेवक, तो उसी ने महानगर पालिका में आके अपना काम करना है, किसी और के जरिए नहीं करवाना है। दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि देखो अक्सर देखा जाता है कि यार नगर सेवक ऑफिशियली कोई और ही होता है लेकिन काम उसका पति देखता है या फिर किसी का लड़का देखता है, किसी का कोई रिलेटिव देखता है और वही एकदम एटीट्यूड में घूमता है कि भाई मी पण नगर सेवक है, माझा आदेश तुम्हाला पाळावा लागेलच। ही गोष्ट ना तर मागील 2-4 महिन्यापासून जास्त वाढत होती, त्यासाठी हा नवीन आदेश काढण्यात आलेला आहे। स्वतः असं काहीतरी परिवर्तन होत आहे आपल्या महानगरपालिकेत, दॅट्स अ गुड थिंग, लक्षात ठेवा। आणि सो कॉल्ड नगर सेवक असं वावरू नका, आता कारवाई होईल। आणि ऐकत रहा प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी, MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी, MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
4: ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियरिंग, VLSI डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग, रोबोटिक्स अँड ऑटोमेशन। फॉर ऍडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टॅक्ट 9371714253 और विजिट MGM कॅम्पस, N6 सिडको, छत्रपती संभाजीनगर।

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस, N6 सिडको, छत्रपति।

कुछ लोग सिर्फ मैच नहीं खेलते, वो एक पूरी जनरेशन की याद बन जाते हैं। आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ MGM 90.8 FM, और आज बात एक ऐसे नाम की है जिसे इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस नाम ही काफी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हर बार जब वो जर्सी नंबर 7 पहनकर ग्राउंड पर आते थे, सिर्फ पुर्तगाल नहीं दुनिया भर के करोड़ों फैंस की उम्मीदें भी उनके साथ चलती थी। इस बार वर्ल्ड कप का सफर खत्म हुआ और शायद रोनाल्डो का फुटबॉल वर्ल्ड कप का चैप्टर भी खत्म हुआ। जब वो मैदान से बाहर निकले, स्टेडियम में सिर्फ तालियां नहीं बज रही थी, वो एक लेजेंड के लिए रिस्पेक्ट की आवाज थी। रोनाल्डो ने हाथ हिलाकर फैंस को शुक्रिया अदा किया और उनकी आंखों में एक अधूरे सपने का दर्द नजर आ रहा था। लेकिन दोस्तों, हर बार कहानी ट्रॉफी से नहीं नापते, कुछ कहानियां ना हौसले, डिसिप्लिन और कभी हार ना मानने वाले जज्बे से लिखी होती है, जैसी रोनाल्डो की थी। एक छोटे से आइलैंड से ये सफर शुरू हुआ था दुनिया का आइकॉन बनने का, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाना और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को सपने देखना सिखाना, ये किसी फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी से कम नहीं है। और आज हम सिर्फ एक फुटबॉलर को नहीं, एक इंस्पिरेशन को सैल्यूट करते हैं। थैंक यू रोनाल्डो हमें ये सिखाने के लिए कि टैलेंट आपको शोहरत तो देता है, लेकिन डेडिकेशन आपको लेजेंड बनाता है। और चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं, लेकिन लेजेंड्स दिल जीतते हैं। और रोनाल्डो ने हमेशा हमारे दिलों पर राज किया है, चैंपियन बन के रहे। देखो, रोनाल्डो का वर्ल्ड कप चैप्टर तो खत्म हुआ, लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा याद रह जाएगी। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: Sanjana! Sanjana!
1: I'm sorry. मैंने आपको पहचाना नहीं.
2: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है. हाँ यही तो है सब निशानियां.

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपति।

0: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MJ युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
2: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
3: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
2: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 और 9665353515.
4: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.
5: MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इज रेडी टू हेल्प यू मेक योर करियर इन होटल मैनेजमेंट, एविएशन, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: FGM 90.8 FM
0: साथ है तो बात है। टूटा टूटा

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

0: करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MJ युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 और 9665353515.
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

आगे का रास्ता खराब था, ये लगा था बड़ा बोर्ड। मैंने बस ये सोचा होगा छोटा मोटा मोड़। हुआ जब ये हादसा और आया मुझे होश, तब जाके जाना बस यहीं तक थी रोड।

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM
0: साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM
0: साथ है तो बात है।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आज का दिन प्रोडक्टिव भी रहा होगा और थोड़ा सा क्योटिक भी होगा, क्योंकि आजकल लाइफ ऐसी ही चल रही है भाई। ऑफिस हो, कॉलेज हो या वर्क फ्रॉम होम हो, अगर आज किसी ने कहा हो बस 5 मिनट का काम है तो समझ जाना कि वो पूरे 50 मिनट का प्रोजेक्ट बनने वाला था। लेकिन अब सारी टेंशन को थोड़ा पॉज दो, ईयरफोन की वॉल्यूम बढ़ाओ और रिलैक्स मोड ऑन कर लो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों तक हम आपके साथ और यहाँ होगी ढेर सारी बातें, पॉजिटिव वाइब्स और एक से बढ़कर एक शानदार गाने। वैसे एक छोटा सा सवाल भी है, आज आपने अपने लिए क्या किया? सिर्फ रील स्क्रॉल करते रहे या किसी अपने को एक मैसेज या कॉल भी किया? कभी कभी एक छोटी सी बातचीत किसी का पूरा दिन बेहतर बना देती है। और अगर आज का दिन आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं गया तो कोई बात नहीं, हर दिन परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता। कल एक नया मौका लेकर आता है, तो मुस्कुराइए, पॉजिटिव रहिए और अपनी वाइब हमेशा हाई रखिए। तो चलिए अब बातों को यही पॉज देते हैं और मूड को बनाते हैं और भी शानदार एक ज़बरदस्त गाने के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजी मनीषा और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से, ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

है आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बारिश का मौसम, ठंडी ठंडी हवा, चाय की खुशबू और सड़क किनारे गर्मा गर्म पकौड़े, मोमोज या पानी पूरी देखकर तो किसी का भी दिल फिसल जाए। लेकिन जरा रुको, इस मौसम में सिर्फ सड़कें ही नहीं बैक्टीरिया और वायरल भी फुल ऑन एक्टिव हो जाते हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि एक प्लेट से क्या ही होगा, तो याद रखिए कभी कभी वही एक प्लेट पूरे हफ्ते का प्लान खराब कर सकती है। मॉनसून में बाहर का खाना जल्दी खराब हो सकता है, पानी दूषित हो सकता है और साफ सफाई का ध्यान रखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो कोशिश कीजिए कि घर का गर्मा गर्म खाना खाए या किसी साफ सुथरी और भरोसेमंद जगह से कुछ ऑर्डर करे। और हाँ, पानी खूब पिए, फल और घर का बना खाना ही अपनी डाइट में शामिल रखिए, क्योंकि इस मौसम में इम्यूनिटी ही असली VIP पास होती है। और बारिश का मजा लीजिए, सेल्फी लीजिए, म्यूजिक सुनिए, लेकिन अपनी सेहत के साथ रिस्क मत लीजिए। आखिर सीजन तो हर साल आएगा, लेकिन अपनी हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मौसम को और भी खूबसूरत बनाते हैं एक शानदार गाने के साथ। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बारिश हो रही हो, बाहर मौसम एकदम फिल्मी हो और ऐसे में अगर हाथ में गर्मा गर्म एक कप सूप आ जाए तो बस पूरा मूड ही सेट हो जाए। सच बताइए मॉनसून में सूप की फील अलग ही होती है ना। जी हाँ, और ये सिर्फ टेस्ट की बात नहीं है, इस मौसम में गर्म गर्म सूप आपको कंफर्ट भी देता है और शरीर को गर्म रखने में मदद भी करता है। टमाटर सूप, स्वीट कॉर्न सूप, वेट सूप या फिर हॉट एंड सॉर, जो आपका फेवरेट हो आज उसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और जेंजी की भाषा में कहे तो मॉनसून प्लस सूप इज इक्वल टू परफेक्ट वाइब चेक। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखिए, अगर बाहर से सूप ले रहे हैं तो ऐसी जगह से ले जहाँ साफ सफाई का अच्छा ध्यान रखा जाए, और अगर घर पर बना रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार, थोड़ी सी काली मिर्च और ढेर सारी सब्जियां डाल दीजिए, फिर तो हर सिप के साथ कंफर्ट और भी कंफर्टिंग हो जाएगा। तो आज की शाम रील्स थोड़ी देर बाद भी देखी जा सकती है, पहले खुद के लिए एक गर्मा गर्म सूप की ट्रीट दी जाए, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें ही पूरे दिन की थकान को गायब कर देती है। चलिए अब इसी गर्म जोशी और पॉजिटिव वाइब्स के साथ बढ़ते हैं अगले शानदार गाने की तरफ। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए शो दिल से ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: है आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पहली बार सुनने में अच्छे लगते हैं और फिर धीरे धीरे आपकी प्लेलिस्ट, आपकी फीलिंग्स और शायद आपकी स्टोरीज का भी हिस्सा बन जाते हैं। और अगर आपका भी मूड आज थोड़ा सा रोमांटिक है या बस दिल चाहता है कि कोई ऐसा गाना बजे जो सीधे हार्ट को हिट करे, तो अगला ट्रैक आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आजकल जेंजिस की एक ही डिमांड होती है, वाइब्स मैच होनी चाहिए और ये गाना वही काम करता है। बिना ज्यादा शोर शराबे की अपनी सॉफ्ट मेलोडी और खूबसूरत एहसास के साथ दिल को छू जाता है। तो चाहे आप बारिश का मजा ले रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, पढ़ाई से छोटा सा ब्रेक लिया हो या बस चिल कर रहे हो, ईयरफोन लगाइए, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए और इस गाने की फील को एंजॉय कीजिए। चलिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करवाते, पेश है आपके लिए पसंदीदा ट्रैक, सुनिए, महसूस कीजिए और अगर स्मैच करे तो इस गाने को रिपीट पर लगाना बिल्कुल मत भूलिए, अपनी प्लेलिस्ट में जोड़ दीजिए एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।
1: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याच्या तपास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक, आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6, कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: एमजीएम विद्यापीठ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
4: ऍडमिशन ओपन एमजीएम युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। Programs BTEC 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhajinagar.

आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बारिश का नाम सुनते ही कुछ लोगों को ट्रैफिक याद आता है, गीले जूते याद आते हैं और लेट होने का स्ट्रेस। लेकिन ज़रा एक मिनट के लिए इसका पॉजिटिव साइड भी देखते हैं। बारिश हमें थोड़ा सा स्लो डाउन करना सिखाती है। हर समय भागते रहने वाली लाइफ में ये मौसम कहता है चिल करो, सब कुछ एक दिन में नहीं करना है। सोचिए मिट्टी की खुशबू, पेड़ों की हरियाली, खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदें, हाथ में चाय या कॉफ़ी और बैकग्राउंड में आपका फेवरेट गाना, इससे ज़्यादा मेन कैरेक्टर वाइब क्या ही होगी। और हाँ, बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदलती, मूड भी बदल देती है। कभी पुरानी यादें ताज़ा कर देती है, कभी नई यादें बनाने का बहाना देती है। तो किसी के लिए लॉन्ग ड्राइव, किसी के लिए किताब, तो किसी के लिए बस एक प्लेलिस्ट ही काफ़ी होती है। तो अगर आज बारिश हो रही है तो सिर्फ शिकायत मत कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, इस मौसम को महसूस कीजिए और छोटी छोटी खुशियों को नोटिस कीजिए, क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छे पल बिना किसी प्लान के मिल जाते हैं। चलिए इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ, मॉनसून वाली फील के साथ सुनते रहिए अगले आने वाले शानदार गाने। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए शो दिल से ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बारिश जितनी खूबसूरत लगती है उतना ही जरूरी है उसके दूसरे साइड को भी समझना, क्योंकि हर एस्थेटिक मौसम के साथ थोड़ी सी रियलिटी चेक भी आती है। मान लेते हैं इंस्टा स्टोरी में बारिश बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में ट्रैफिक जाम, पानी से भरी सड़कें, लेट ऑफिस, गीले जूते और छतरी भूल जाना, ये सब भी इसी पैकेज का हिस्सा है। और सबसे ज़रूरी बात, इस मौसम में वायरल बुखार, सर्दी जुकाम और पेट से जुड़ी परेशानियाँ भी बढ़ सकती है, इसलिए बाहर का खाना सोच समझ कर खाइए, साफ पानी पीजिए और भीगने के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सूखे कपड़े पहन लीजिए। अगर आप बाइक या स्कूटी चलाते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा सावधान रहिए, सड़कें फिसलन भरी हो सकती है, इसलिए स्पीड से ज़्यादा सेफ्टी को महत्व दीजिए। आखिर कूल बनने से ज़्यादा ज़रूरी है सेफ घर पहुँचना। तो बारिश का मज़ा ज़रूर लीजिए, लेकिन थोड़ी स्मार्टनेस के साथ, क्योंकि जेंजी का नया मंत्र यही है, वाइब्स भी चाहिए और सेफ्टी भी। अब मौसम चाहे जैसा भी हो, हमारी म्यूजिक वाइब्स हमेशा ऑन रहने वाली है। पेश है अगला शानदार गाना ओनली फॉर यू इन द शो दिल से ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बारिश का मौसम है और सच कहे तो ये सीज़न पूरा वाइब शेक है। कहीं गर्मा गर्म चाय, कहीं लंबी ड्राइव, कहीं बारिश की बूंदें और बैकग्राउंड में आपका फेवरेट गाना। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी सेफ्टी। बारिश का मज़ा लीजिए लेकिन थोड़ा स्मार्ट बनकर। घर से निकलने से पहले मौसम देख लीजिए, छतरी या रेनकोट साथ रखिए और अगर सड़क पर पानी ज़्यादा भरा हो तो शॉर्टकट लेने की बजाय सेफ रास्ता चुनिए। अगर आप बाइक या स्कूटी से ट्रैवल करते हैं तो स्पीड कम रखिए, क्योंकि बारिश में सड़कें कब फिसलन भरी हो जाए पता भी नहीं चलता। और अगर बिजली कड़क रही हो तो खुले मैदान या पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचिए। एक और छोटी सी बात, भीगने के बाद ज़्यादा देर तक गीले कपड़ों में मत रहिए। घर पर पहुंचकर सूखे कपड़े पहनिए और अगर हो सके तो गर्मा गर्म चाय या सूप के साथ खुद को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। याद रखिए, असल कूल वही है जो अपनी और अपने अपनों की सेहत का भी ख्याल रखे, क्योंकि बारिश हर साल आएगी लेकिन आपकी मुस्कान और आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मौसम का मज़ा भरपूर लीजिए, खूब यादें बनाइए लेकिन जिम्मेदारी के साथ। अब इसे पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ते हैं अगले कुछ शानदार गानों की तरफ। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए MJ 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: देखते आज की एक खूबसूरत शाम भी अपनी आखिरी पड़ाव पर आ गई है। आप सुन रहे हैं शो दिल से ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आज का ये सफ़र, हमारी बातें, आपकी फेवरेट धुनें और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल ज़रूर छोड़ गई होगी। वैसे याद रखिए, लाइफ हर दिन परफेक्ट नहीं होती, कभी काम का प्रेशर, कभी ट्रैफिक, कभी ओवर थिंकिंग, लेकिन हर दिन में एक छोटी सी खुशी ढूंढ लेना वही असली जेन ज़ी सुपर पावर है। तो आज रात थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश कीजिए, अपने फ़ोन को थोड़ा रेस्ट दीजिए और कल के लिए खुद को रिचार्ज कीजिए, क्योंकि एक नई सुबह हमेशा नए मौके लेकर आती है। अगर आज का शो आपको पसंद आया हो तो कल इसी वक्त फिर से मिलेंगे। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, खूब मुस्कुराइए और याद रखिए, लाइफ में टेंशन आएगी लेकिन आपकी वाइब्स कभी डाउन नहीं होनी चाहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा, अब आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए और हमेशा खुश रहिए। गुड नाइट, टेक केयर एंड ऑफ कोर्स मिलते हैं कल इसी टाइम, इसी जोश और इसी म्यूजिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड टू एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य एमजीएम कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
4: ऍडमिशन ओपन एमजीएम युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग, VLSI डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, robotics and automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhajinagar।

0: नमस्कार, छत्रपती संभाजी नगर.
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM.
2: हाँ, देयर यू आर. चलो आज पिक्चर देखते हैं.
3: नहीं, पिक्चर नहीं, आज हम लोग डिस्को जाएंगे. चलो जल्दी से चेंज कर लो अभी.
2: क्यों, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस?
3: ये भी कोई कपड़े हैं, बिल्कुल बेकार लग.

कुछ लोग सिर्फ मैच नहीं खेलते, वो एक पूरी जनरेशन की याद बन जाते हैं। आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ MGM 90.8 FM, और आज बातें ऐसे नाम की है जिसे इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस नाम ही काफी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हर बार जब वो जर्सी नंबर 7 पहनकर ग्राउंड पर आते थे, सिर्फ पुर्तगाल नहीं दुनिया भर के करोड़ों फैंस की उम्मीदें भी उनके साथ चलती थी। इस बार वर्ल्ड कप का सफर खत्म हुआ और शायद रोनाल्डो का फुटबॉल वर्ल्ड कप का चैप्टर भी खत्म हुआ। जब वो मैदान से बाहर निकले, स्टेडियम में सिर्फ तालियां ही नहीं बज रही थी, वो एक लेजेंड के लिए रिस्पेक्ट की आवाज थी। रोनाल्डो ने हाथ हिलाकर फैंस को शुक्रिया अदा किया और उनकी आंखों में एक अधूरे सपने का दर्द नजर आ रहा था। लेकिन दोस्तों, हर बार कहानी ट्रॉफी से नहीं नापते, कुछ कहानियां ना हौसले, डिसिप्लिन और कभी हार ना मानने वाले जज्बे से लिखी होती है, जैसी रोनाल्डो की थी। एक छोटे से आइलैंड से ये सफर शुरू हुआ था दुनिया का आइकॉन बनने का, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाना और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को सपने देखना सिखाना, ये किसी फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी से कम नहीं है। और आज हम सिर्फ एक फुटबॉलर को नहीं, एक इंस्पिरेशन को सैल्यूट करते हैं। थैंक यू रोनाल्डो हमें ये सिखाने के लिए कि टैलेंट आपको शोहरत तो देता है, लेकिन डेडिकेशन आपको लेजेंड बनाता है। और चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं, लेकिन लेजेंड्स दिल जीतते हैं। और रोनाल्डो ने हमेशा हमारे दिलों पर राज किया है, चैंपियन बन के रहे। देखो, रोनाल्डो का वर्ल्ड कप चैप्टर तो खत्म हुआ, लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा याद रह जाएगी। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

मेरी एक फ्रेंड है यार जिसको पानी पूरी इतनी पसंद है कि कहती है अक्सर मैं दिन में से 3 से 4 टाइम तो पानी पूरी खा ही सकती हो और मेरे साथ तुम चैलेंज लगाओ, मुझे तुम हरा ही नहीं सकते। आपकी भी कुछ दोस्त हो गए यार और इतने पानी पूरी उनको पसंद है कि भाई वो लंच डिनर और ब्रेकफास्ट में बस पानी पूरी खा ही सकते। स्पेशली ना तो लड़कियां पानी पूरी की बहुत शौकीन होती है। देखो कुछ लोग भले आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर सकते हैं लेकिन पानी पूरी रिजेक्ट नहीं कर सकते। बट इन्हीं पानी पूरी लवर्स के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि जो आप पानी पूरी खाते हैं वो सच में उतनी हाइजीनिक है क्या? अक्सर पानी पूरी सड़क के किनारे हमें खाने को मिलती है और कुछ कुछ पानी पूरी वाले ऐसे जगहों पर अपना थैला लगाते हैं जहां पर साइड से नाला गुजरता है, कचरा होता है और पानी इतना गंदा यूज करते हैं कि ना खाए तो बेटर है। देखो मैं सभी पानी पूरी वालों का नहीं कह रहा हूँ लेकिन जो चीजें मैंने नोटिस की अपने शहर में तो लगा कि यार हाइजीन तो जीरो है ही। कहने का मतलब इतना है कि जो जितने भी पानी पूरी वाले स्टॉल लगाते हैं ना तो प्लीज यार अपना जो पानी है जो मटेरियल है वो हाइजीन रखे। और कुछ मैंने देखा है पानी पूरी वाले जो कि बस दिखावे के लिए हाथ में ग्लोव्स पहनते हैं और एक ही ग्लोव्स पूरे काम होने तक यूज करते हो और ऐसे कुछ वीडियोस भी हमने देखे होंगे कि पानी पूरी वाले किस तरीके का पानी यूज करते हैं। और मौसम बारिश का है तो जरा अवॉइड कीजिएगा बाहर का खाना और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। एंड FDA अभी जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है जितने होटल्स है जहां जहां पर खाने की चीजें मिलते हैं उन पर, उस तरीके से आने वाले वक्त में और कुछ दिनों में पानी पूरी के गाड़ों पर भी FDA कार्रवाई कर सकता है। तो अगर पानी पूरी वालों आपको आपका थैला लगाना है तो प्रिकॉशन ले बहुत जरूरी है वरना FDA ने अगर आपके ऊपर कार्रवाई की बहुत पछताना पड़ेगा। तो इस वजह से हाइजीन मेंटेन कीजिएगा। देखो मैंने कहा तो ये तो होने वाला है नहीं, बस आप लोग भी सतर्क रहिए और जिस जगह पर आप पानी पूरी खा रहे हो पहले उसको पूछिएगा कि भाई तूने पानी कौन सा यूज किया है, किस तरीके का है और चेक कीजिए वहां पर हाइजीन है या नहीं। पानी पूरी खाने के चक्कर में आप बीमार पड़ जाओगे और बाद में आप भी बहुत पछताओगे। तो बी सेफ, बी केयरफुल एंड स्टे ट्यून।

नगर सेवक कोई और ही होता है लेकिन काम कोई और ही करता है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन अभी महानगर पालिका में दिखाई दे रही थी। और ये सब चीजें चलती आ रही थी और सबको पता था, लेकिन एक्शन कोई ले ही नहीं रहा था। पत्नी चुनकर आई है तो काम पूरा पति देखता था, इस तरीके का ये सीन चल रहा था। या किसी का दीर या किसी का लड़का ये काम देखता था नगर सेवक का, और जो नगर सेवक थी वो तो अपने घर पर थी, घर का काम कर रही थी, कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही थी। एंड ये सो कॉल्ड नगर सेवक महानगर पालिका में बहुत घूम रहे थे और ऐसे आदेश दे रहे थे कि वही नगर सेवक है और उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो यही सब चीजें अब बंद होने वाली है, क्योंकि महानगर पालिका आयुक्त ने एक ऐसा आदेश निकाला है कि अगर सो कॉल्ड नगर सेवक काम खराब करे या फिर वही खुद आदेश दे या तो फिर नगर सेवक का काम वो सो कॉल्ड नगर सेवक ही करे, तो जो नगर सेवक चुनकर आया है उस पर भी कार्रवाई होगी। जो ऐसे सो कॉल्ड नगर सेवक बनकर घूम रहे ना, तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो जो इंसान चुनकर आया है नगर सेवक, तो उसी ने महानगर पालिका में आके अपना काम करना है, किसी और के जरिए नहीं करवाना है। दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि देखो अक्सर देखा जाता है कि यार नगर सेवक ऑफिशियली कोई और ही होता है लेकिन काम उसका पति देखता है या फिर किसी का लड़का देखता है, किसी का कोई रिलेटिव देखता है, और वही एकदम एटीट्यूड में घूमता है कि भाई मी पण नगर सेवक है, माझा आदेश तुम्हाला पाळावा लागेलच। ही गोष्ट ना तर मागील 2-4 महिन्यापासून जास्त वाढत होती, त्यासाठी हा नवीन आदेश काढण्यात आलेला आहे। स्वतः असं काहीतरी परिवर्तन होत आहे आपल्या महानगरपालिकेत, दॅट्स अ गुड थिंग, लक्षात ठेवा। आणि सोकळ नगर सेवक असं वावरू नका, आता कारवाई होईल। आणि ऐकत रहा

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।